0: कैमरा रोलिंग,
1: सीन 24 शूट 3 एक्शन।
2: तो या फेजर रवेचकी प्रिमायो वेकलेग मिखाइला मकारे आइस बुक चैलेंज।
3: Bonjour, je reviens tout juste de deux journées de guidage très particulières. Moi, dans le cadre de mon service de guide, j'offre un service qui s'appelle Je découvre.
4: 对，这三百上，
5: 就是这些人里面肯定有大三百，
4: 北大好几个打300多，王富，
6: 哦对，王富他妹没有来。